फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह बैतूल केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा।

हरिओम शरण के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। आइए सुनते हैं अगला भक्ति गीत जिसे गाया है जगजीत सिंह ने।

FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना। लीजिए, पेश है अगला भक्ति गीत मोहम्मद अहमद हुसैन के स्वर में।

0: डॉक्टर मणिकांतन के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति नगमा। श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम भक्ति धारा अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: अहंकार जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। अहंकार की उम्र बहुत कम होती है। अहंकार की उत्पत्ति अहम से हुई। जब इंसान में अहम का भाव जागृत होता है, तब अहंकार की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। अहंकार किसी राजा, देशभक्त या ज्ञानवान के पतन का कारण बनता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों और इतिहास में भरे पड़े हैं। इस धरती पर आज तक जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, और जो अपने सहज सुलभ व्यवहार से शिखर तक पहुंचे और आज भी विद्यमान है, वे सभी अहंकार रहित थे। जिनका व्यवहार विनम्रता से छलाछल भरा हुआ था, वे सभी सृष्टि पर्यंत हमारे प्रेरणा स्रोत बन रहेंगे। इसके ठीक विपरीत अहंकारी आगे तो बढ़ता है, किंतु शिखर तक पहुंचने से पहले वो टूटकर बिखर जाता है। वो कभी बड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि दुनिया के समक्ष उसकी छवि घृणित व्यक्ति के रूप में निर्मित होती है। जब किसी बलवान को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, तो उसकी शक्ति का ह्रास तय है। जब कोई देश अहंकारी होता है, तो उसकी तबाही भी सुनिश्चित है। कुल मिलाकर अहम अथवा अहंकार से सर्वथा हानि ही होती है, और इसके दुष्परिणाम भयावह होते हैं। इसका प्रमाण यदि शास्त्रों में खोजा जाए, तो हम पाएंगे कि अहंकार के वशीभूत बड़े बड़े सूरमाओं का दुखद अंत हुआ, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। नंका नरेश रावण, जो सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान योद्धा और शास्त्रों में पूर्ण पारंगत था, किंतु अहम भाव से ग्रसित होने के कारण माता सीता हरण का घृणित कृत्य उन्होंने किया। अहंकार में अंधे रावण को सही दिशा देने सबके प्रयास विफल हुए। परिणामतः अहंकार की ज्वाला ने न केवल उसके पूरे वंश का विनाश किया, बल्कि लंका नगरी को भी खाक में मिला दिया। जब इंसान किसी भी क्षेत्र में तरक्की करता है और अपने अहम पर अंकुश नहीं रख पाता है, तो समझिए कि वो अपने पतन का मार्ग आप ही प्रशस्त करता है। क्योंकि तरक्की उसे शिखर पर तो ले जाती है, किंतु अहम उसे जमीन पर लापटकता है। कारण, अहंकारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए अन्यों का अपमान करने में कहीं अधिक आनंद का अनुभव करता है। वास्तव में देखा जाए तो दूसरों को अपने से कमतर समझने की भूल में वो स्वयं ही रसातल पर पहुंचता जाता है। अहम के संदर्भ में यदि हम विद्यार्थियों की बात लें, तो कक्षा में हमेशा अव्वल रहने वाले कई विद्यार्थी अहम में चूर होकर कक्षा के साधारण विद्यार्थियों के समक्ष अपनी शेखी बघारते हैं, और अहम के वशीभूत वे परिश्रम भी अधिक नहीं करते। और जब परीक्षा का समय आता है, तो उन्हें

0: यही अहम ले डूबता है जो उनकी असफलता का कारक सिद्ध होता है। जब कोई साधारण विद्यार्थी उससे काफी आगे निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना और उस सफलता को पचा पाना बेहद कठिन काम है। जो ज्ञानवान हैं, जिनका अहम रूपी विश्व पर नियंत्रण है, वे ही शिखर पर विराजमान होते हैं। एक नम्र व्यक्ति यदि किसी से कोई सद्ज्ञान अर्जित करता है तो वो उसके सुवास से पूरे वातावरण को महकाता है। जीवन में लगातार मिल रही उपलब्धियों को सहजता से लेने वाला ही वास्तव में अहंकार रहित और सर्वश्रेष्ठ है।
1: फुलवारी बच्चों की मनोहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, जिसमें रविवार की सुबह महत्वपूर्ण विषयों पर रहती है चर्चा जारी। नहीं भूलते हम चर्चा के बीच सुनवाना बच्चों को मीठे मीठे गीत। इतना ही नहीं है काफी, नन्हे मेहमान में लेकर आते किस्से कहानियां हमारे नन्हे साथी। देश दुनिया में हमने है ठाना, बच्चों को बताना है दुनिया का ताना बाना। फुलवारी बच्चों की मनोहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, रविवार सुबह 8:30 बजे।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर है ए हरिहरन, रविंद्र साठे और साथियों के।

विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया। किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। कलाकार है प्रभासी और साथी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है।

0: सहस्रतम वर्षस्य।
1: श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंजनी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराने का। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। सूचनात्मक कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसे आप सुन सकेंगे प्रातः 7:50 पर। सुबह 8:30 प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9 से 10 बजे तक आनंद ले सकेंगे विविध भारती सेवा के मनोरंजक कार्यक्रम का, विविध भारती के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर होगा कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके गीत। कार्यक्रम महिला जगत, इसे सुनेंगे सुबह 10:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा परिवार में संवाद से सौहार्द कैसे बढ़ाए, सेहत की पोटली में तनाव मुक्त जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा, साथ ही कुछ फिल्मी गीत। इसके पश्चात सुबह 11 बजे से शाम 5:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के मनोरंजक कार्यक्रम। शाम 5:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा वित्तीय जागरूकता सबके लिए आवश्यक, साथ ही सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, स्तंभ अजब गजब दुनिया और कुछ फिल्मी गीत। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा शाम 6:05 पर, कलाकार है जायत्री वंशकार। शाम 6:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सबरस का आनंद लेंगे शाम 6:50 पर। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा बिरसा मुंडा शहीदी दिवस, सामयिक कृषि चर्चा में मूंग उड़द की कटाई का कार्य समय पर कर ले, साथ ही लोकगीत, बाजार भाव, मौसम का हाल और श्रृंखला बातें खेती किसानी की। कार्यक्रम चित्र माधुरी का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:00। रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम युगल गीत। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम होंगे रात 9 से 10 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। रात 10 बजे आप सुनिए, रात 10:25 पर होगा हमारा विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष, ये प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:00 हिंदी में और रात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में। खेती किसानों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश भर में आयोजित होंगे विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर। एचपीवी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश इस राज्य में शामिल। और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर। समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में शुरू होगी। इसमें 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। कल भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था भी समय पर जांच और उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। मध्य प्रदेश एचपीवी टीकाकरण अभियान में शेष राज्यों में शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान राज्य की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य में सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को

0: जिस वर्ष में वो छात्रवृत्ति दिए हैं, विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से वर्ष 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की बैठक भी लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान सबसे पवित्र अधिकार है, उससे कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सके। उन्होंने भारतीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कहा कि नाम चोरी और हटाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें। प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन और सतत पर्यावरण प्रबंधन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसको वैज्ञानिक तथा तकनीक आधार प्रदान करने की दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेपकास्ट द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक दस्तावेज और एटलस तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान वर्ष 2026 के अंतर्गत मेपकास्ट द्वारा उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज भूजल एटलस अंतर्जलीय तैयार किया गया है। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जिले की भूजल एटलस तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे भूजल प्रबंधन और जल गुणवत्ता का आकलन प्रभावी होगा। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। ब्रिटेन के कार्डिफ में कल खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरूआत रविवार को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज खंडवा और श्योपुर जिलों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के रकबे में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मंदसौर में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। धार जिले में आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक त्योहार जुलूसों के संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आगामी कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने नवीन तहसील और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कटनी में भी मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिले में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मलेरिया जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डिंडौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समस्याग्रस्त बसाहटों में सार्वजनिक उपयोग हेतु 46 नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। पेश है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। इस कार्यक्रम में हम पहला गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है कैफी आजमी, संगीतकार है खयम और फिल्म का नाम है आखिरी खत।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, क्लासिक नगमों का सफर आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म घराना से ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत से संवारा है रविशंकर शर्मा ने और इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आस का पंछी से ये गीत। संगीत है शंकर जयकिशन का, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से। में अगला गीत है जिसकी शब्द रचना है प्रेम धवन की, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया, रविशंकर का संगीतबद्ध किया, फिल्म प्यार का सागर से ये गीत।

क्लासिक फिल्मी गीतों के सफर में सुने ये गीत। स्वर है मोहम्मद रफी के, शब्द है शकील बदायूनी के, संगीत है रविशंकर का और फिल्म का नाम है गहरा दाग।

है इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश की ओर, फिल्म हम दोनों से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, संगीतकार है जयदेव कुमार का, गीतकार है साहिर लुधियानवी।

0: श्रोताओ, इस खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम यादों के झरोके से यहीं संपन्न होता है। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में सूचना इस प्रकार है। शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थी 20 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कान्हा शांतिवन हैदराबाद हुए रवाना। जिला जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हार्टफुलनेस फाउंडेशन एवं शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल के बीच हुए एमओयू के अनुसरण में 8 जून को संस्था के फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के 41 प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय प्रशिक्षक श्री दिलीप बेले एवं कुमारी प्रतिमा गौरे के नेतृत्व में 20 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग कान्हा शांतिवनम हैदराबाद रवाना हुए। रवाना होने पूर्व बैतूल रेलवे स्टेशन पर हार्टफुलनेस संस्था के प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए ऑन जॉब ट्रेनिंग से मन लगाकर कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कान्हा शांतिवनम विश्व के सबसे बड़े ध्यान एवं आध्यात्मिक परिसरों में से एक है, जहां विशाल उद्यान, हरित क्षेत्र, पौधों की विविध प्रजातियां तथा आधुनिक लैंडस्केपिंग की उत्कृष्ट व्यवस्था विकसित की गई है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को उद्यान प्रबंधन, पौध उत्पादन, पौध संरक्षण तथा आधुनिक लैंडस्केप डिजाइनिंग से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। साथ ही हार्टफुलनेस ध्यान की विधि सीखने का अवसर प्राप्त होगा। संस्था प्राचार्य श्री अजीश पंद्रे ने बताया कि हार्टफुलनेस से हुए एमओयू पश्चात संस्थान के प्रवेश में लाभ मिलता है। विगत वर्ष इस संस्था में सभी ट्रेडों में 100% प्रवेश हुआ है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेड आधुनिक परिवेश में एक रोजगार एवं स्वरोजगार परक व्यवसाय है, जिसमें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करके युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सत्र 2026 से 27 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी फ्लोरिकल्चर सहित स्टेनो, हिंदी, अंग्रेजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मैनेजमेंट जैसे 10 ट्रेडों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य श्री अजीश पंद्रे, वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी श्री रेवा शंकर पंडागरे, दिलीप कुमार सोनी, श्रीमती विनीता पाटिल, श्री रामनारायण गंगारे, श्री चिंतामणि विश्वकर्मा, श्री राघवेंद्र सिंह ठाकुर, श्री सचिन सरले, श्री महेश चौधरी एवं श्री सोमू मराठा उपस्थित रहे। अब आइए सुनते हैं ये देशगान।

0: सुबह सवेरे।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटीए मारीवैक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दामबुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह मंत्रालय ने कहा कि प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरिंग सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के बास्की और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नवविकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावना भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है। भारत

बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो

0: करने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: ऊपर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवा 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही ऊपर रेट मिल रहा है, दवाई कम भी कर रहा है। अब हमारा रुपया गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक हो रहा है।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडंगू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1

0: ई वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फुलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंध

समय था जब खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थी। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास घुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है। लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी है। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठी बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं: सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से

0: ये है विविध भारती। कुछ
1: हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं,
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: उत्तपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
0: हुँ?
2: और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए।
0: हुँ?
2: और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
2: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं
0: जी। सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
0: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को

0: मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चार शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी न मालूम हो, परी वह पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये बुद्धियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी

0: काया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
0: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊँगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगे जाओ ना वापस नहीं करते।
0: और हाय
2: हर गोविंद भाई, हाँ? तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
0: कहाँ बड़ी बहुरिया?
2: मेरी माँ के पास।
0: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
2: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
0: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ। अच्छा।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए, उसको और क्या कहेंगे, निछल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
3: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए?

0: बड़ी बहू या हम क्या करें।
1: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
2: माँ, माँ देखो हरगोबिंद काका आए हैं।
3: पाए लागू माँ जी।
4: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
3: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
4: मेरी बेटी का कोई संवाद?
3: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
4: हाँ?
3: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
4: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
3: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
4: सो तो है।
3: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
4: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब

0: Carlo.
1: Acha, acha, Maggi.
0: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल, भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठ रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
3: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे,
3: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, पाए लागू।
0: जीते रहो बेटा,
3: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, राह खर्च तो है?
3: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
3: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
3: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहां आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस को उसकी मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो।
1: पर
2: मैं तुम्हारा संभाल न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: गोविंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: गोविंद भाई तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी
2: बड़ी माँ।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry.

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से। एजेंट विनोद इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत है अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

फिल्म है सिम्बा, राहत फतेह अली खान, अजीज कौर की आवाज में ये गीत। संगीत दिया तनिष बागची ने।

तुम्हारी सुलू इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साशा तिरुपति की आवाज में, जावेद अख्तर ने इसे लिखा और तनिष्क का म्यूजिक था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर यह फिल्म का नाम शेखर रावजानी समीर सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज है विशाल शेखर का संगीत।

0: आनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कैसे बना ये गाना?
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
1: बहुत ही बुढ़ा किसान,

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा

युवराज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सीवी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे। यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

कल्पराज खोसला ने अपनी शैली से हटकर टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलह।

पृथ्वीराज खोसला हैं। अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है

खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई

तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को

0: था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्व दीपा सिंह। नीमच जिले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासनिक टीमों ने निरीक्षण शुरू किए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसडीएम पराग जैन और तहसीलदार संजय मालवे ने नीमच के ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल में स्थापित अलार्म सिस्टम और आपातकालीन निकास द्वार की उपलब्धता और कार्यशीलता का बारीकी से जायजा लिया। उज्जैन जोन का पदभार संभालने के बाद आईजी राकेश गुप्ता पहली बार नीमच पहुंचे। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए की बैठक ली। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी नमेश अग्रवाल, एसपी राजेश व्यास, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। नीमच जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम रातीखेड़ा में एक अनूठी प्रशासनिक पहल देखने को मिली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देर रात तक गांव में रुकी और पीएम आवास योजना के लाभार्थी हरिराम के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया। कलेक्टर चंद्रा अधिकारियों के दल के साथ बस से करीब 2 घंटे की यात्रा कर खातीखेड़ा पहुंचे। नीमच जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी।

सड़क बिजली शिक्षा और वन राजस्व से संबंधित मामलों पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। नियमित प्रशासन ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अनूठी पहल की है। कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी अलग अलग वाहनों की बजाय एक ही बस में सवार होकर खातीखेड़ा जन समस्या निवारण शिविर पहुंचे। प्रशासन की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। नीमच नगर पालिका द्वारा गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद पार्क में वृहद स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और एसडीएम पराग जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद पार्क परिसर की साफ सफाई की। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नीमच जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद ग्रीनको परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी। विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम बड़ी में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने लगभग 3.800 हेक्टेयर बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमण कानून से मुक्त कराया। जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने शनिवार को जावद अनुभाग की विभिन्न थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंगोली, रतनगढ़, बनासा थाना सहित सरवानिया, महाराज, टेकिन और कंजाड़ा चौकियों की कार्य प्रणाली और संसाधनों का जायजा लिया। श्री व्यास ने थानों के निरीक्षण के दौरान हवालात की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने रोशनदानों को सुरक्षित करने, शौचालयों की नियमित सफाई और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। पिछले दिन नीमच जिले के जीरन में सीआरपीएफ जवान संजय पाटीदार का निधन हो गया। 35 वर्षीय श्री पाटीदार सीआरपीएफ नीमच के डीआईजी रेंज कार्यालय में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उन्हें राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नीमच जिले में 9162 किसानों से कुल 4,80,511 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जो कुल खरीदी का 96% है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल उपार्जित गेहूं में से 4,56,691 क्विंटल गेहूं का सुरक्षित परिवहन पूरा कर लिया गया है। जिले के 12 उपार्जन केंद्रों ने शत प्रतिशत परिवहन का लक्ष्य हासिल किया है। कुल 97% प्रकरणों में स्वीकृति पत्रक जारी किए जा चुके हैं। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 124.21 करोड़ रुपए और स्टेट बोनस के रूप में 1.92 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 126.13 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 102.15 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं, जो औसत भुगतान का 86% से अधिक है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से ये गीत। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने और आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की।

0: भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम के स्वरों में। संगीतकार है हिमेश रेशमिया, गीतकार है समीर और फिल्म का नाम है रन। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर पंजाब से। श्रोता है सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिश संधू और मैक्स।

संगीत को सुनना चाहा है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। इस गीत को आवाज दी है शब्बीर कुमार ने, लिखा है SH बिहारी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।

ये गीत बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने, आवाज है उदित नारायण की। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त हुआ है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। फरमाइश करता है संतोष खड़से और विनोद खड़से।

आपकी पार्टी आपके गीत कार्यक्रम में अंतिम पत्र हमें प्राप्त हुआ है। भवानी मोहल्ला बैतूल बाजार बैतूल मध्य प्रदेश से श्रोता है ज्योति भारती राजकुमार कंचन।

विकास, कविता, मनोज, स्नेहा, दर्श, ओंकार। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहित चौहान के स्वर में फिल्म जब वी मेट से ये गीत। शब्द है इरशाद कामिल के, संगीत है प्रीतम का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत अब यही संपन्न होता है। FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार सखी श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी प्रीति। स्वीकार कीजिए प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। तो सखियों बताइए, गर्मी की छुट्टियाँ कैसी रही? यकीनन आप में से कई सखियाँ अपने मायके गई होंगी, परिवार और बचपन की यादों के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताए होंगे और आप भी नई ऊर्जा, नई उमंग और नई जिम्मेदारियों के साथ अपने दैनिक जीवन में वापस भी आ गई होंगी। कहते हैं कि मायका केवल घर नहीं होता बल्कि भावनाओं का वह संसार होता है जहाँ कुछ दिन बिताकर मन फिर से तरोताजा हो जाता है और जब मन प्रसन्न हो तो रिश्तों में मिठास भी अपने आप बढ़ने लगती है। इसी बात से जुड़ा है हमारा आज का विषय, परिवार में संवाद और सौहार्द कैसे बढ़ाएं। आज के समय में जब परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं तब एक दूसरे के लिए समय निकालना और संवाद बनाए रखना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। आखिर परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनापन कैसे बना रहे, छोटे छोटे मतभेद मन भेद में ना बदले, इसके लिए क्या किया जाए, इन्हीं पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की बात का विषय है परिवार में संवाद और सौहार्द कैसे बढ़ाएं और सेहत की पोटली में जानेंगे तनाव मुक्त जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और होगी आप सभी की प्रिय श्रृंखला सखियों की पसंद, जिसमें सुनेंगे आप ही के पसंद के कुछ सुमधुर गीत। सखियों श्रोताओं, संवाद यानी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करना। जब परिवार में खुलकर बातचीत होती है तो विश्वास बढ़ता है, समस्याएं आसानी से सुलझती हैं और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। कहते हैं जहां संवाद होता है वहां विवाद कम होता है। परिवार में संवाद केवल बोलना नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझना है। सुबह से शाम तक काम की व्यस्तता और मोबाइल की दुनिया में खोए रहने के कारण बातचीत का समय कम हो गया है। सखियों, संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ती हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है, बच्चों में अकेलेपन की भावना विकसित हो सकती है, छोटी समस्याएं भी बड़ी बन सकती हैं। इसीलिए परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित संवाद बहुत आवश्यक है। सखियों, सौहार्द का अर्थ है प्रेम, सम्मान, सहयोग और आपसी समझ का वातावरण। सौहार्दपूर्ण परिवार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, मतभेद होने पर मन भेद नहीं होने दिए जाते, सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। ऐसे परिवार में रहने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट और खुश होते हैं। सखियों, यदि हमें अपने परिवार में संवाद और सौहार्द बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कुछ समय परिवार के लिए निकालना ही चाहिए। दिन में कम से कम एक समय ऐसा हो जब पूरा परिवार साथ बैठे, चाहे भोजन का समय हो या शाम की चाय। इस दौरान मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर केवल बातचीत करें। जब परिवार के सदस्य दिन भर के अनुभव साझा करते हैं तो आपसी जुड़ाव बढ़ता है। सखियों, हमें सुनने की आदत विकसित करना चाहिए। अक्सर हम अपनी बात कहने में अधिक रुचि रखते हैं लेकिन सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनते। अच्छा संवाद तभी संभव है जब हम धैर्य पूर्वक सुनेंगे। घर के हर सदस्य, चाहे वह घर की महिला हो या बच्चे, जिससे उन्हें सम्मान व अपनापन महसूस हो, हमें उनकी हर बात सुननी चाहिए। श्रोताओं, हमें हमेशा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। परिवार में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन एवं आवाज की तीव्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कटु वचन रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं जबकि मधुर शब्द संबंधों को मजबूत बनाते हैं। क्रोध की स्थिति में भी संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सखियों श्रोताओं, प्रशंसा करने की आदत डालें। जब कोई सदस्य अच्छा कार्य करे तो उसकी सराहना जरूर करें। एक छोटा सा धन्यवाद, बहुत अच्छा किया या मुझे तुम पर गर्व है जैसे शब्द रिश्तों में नई ऊर्जा भर देते हैं। प्रशंसा आत्मविश्वास बढ़ाती है और सकारात्मक माहौल बनाती है। किसी भी समस्या पर शांत मन से चर्चा करें, आरोप प्रत्यारोप से बचें और समाधान खोजने का प्रयास करें। सखियों, याद रखिए, समस्या से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता लेकिन हर रिश्ते से बड़ा उस समस्या का समाधान हो सकता है। श्रोताओं, आज के समय में बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना बहुत आवश्यक हो गया है। आजकल बच्चों को केवल सुविधाओं की नहीं बल्कि माता पिता के समय और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनके साथ खेले, उनके साथ बातें करें, उनकी समस्याएं समझें और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करें। उनके दिमाग में जो जो नए नए आइडियाज आते हैं उनको प्रोत्साहित करें। जब बच्चे परिवार से जुड़े रहते हैं तो उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। सखियों, साथ मिलकर छोटे छोटे उत्सव मनाएं।
त्योहार, जन्मदिन, वर्षगांठ या पारिवारिक आयोजन परिवार को जोड़ने का अच्छा अवसर होते हैं। ऐसे अवसरों पर साथ मिलकर तैयारी करना, खुशियां बांटना आपसी रिश्तों को मजबूत बनाता है। परिवार में महिलाएं ही सदस्यों को जोड़ने का कार्य करती हैं। उनका स्नेह, धैर्य और समझदारी कई बार कठिन परिस्थितियों को भी सहज बना देती है। हालांकि यह जिम्मेदारी केवल महिलाओं

की नहीं है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की है। तो श्रोताओं, उम्मीद है आज की चर्चा से आपको अपने परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के कुछ सरल और उपयोगी सूत्र मिले होंगे। तो अब समय है आपके संदेशों को शामिल करने का। श्रोताओं, हमें हमारा पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कृष्णपुरा टिकारी से। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं प्रतिभा, वैशाली, सुनीता, पूजा और काजल। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से ये प्यारा सा गीत।

0: चाहिए वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: धन्यवाद सखियों, और अब आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं आज की सेहत की पोटली। हमारी आज की पोटली में हम लाए हैं तनाव मुक्त जीवन और मानसिक स्वास्थ्य का कैसे रखें ख्याल। श्रोताओं, दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें और सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट अपने लिए निकालें। ईश्वर का स्मरण करें, गहरी सांस लें और दिन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। नींद पूरी ना होने से तनाव, चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है। सखियों, नियमित व्यायाम करें। हल्की सैर, योग या प्राणायाम तनाव कम करने में बहुत मददगार होते हैं। रोज 20 से 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम मन को भी तरोताजा रखता है। और श्रोताओं, सबसे मुख्य, अपनों से खुलकर बातें करें। मन की बात अपने परिवार या मित्रों से जरूर साझा करें। अपनी भावनाओं को दबाकर रखने से तनाव बढ़ सकता है। और तो और श्रोताओं, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय अपनी पसंद के कामों के लिए भी रखें। संगीत सुनना, पढ़ना, बागवानी करना या कोई नई कला सीखना मन को सुकून देता है। साथ ही संतुलित आहार लें। ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। हर दिन कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपको खुशी मिले। जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने का यह एक आसान तरीका है। तो सखियों, याद रखिए, तनाव को पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन सही आदतों के माध्यम से उसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो श्रोताओं, अब हम अपने अगले व्हाट्सएप मैसेज को शामिल करते हैं। हमारा अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नागपुर महाराष्ट्र से। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म कुछ कुछ होता है से लड़की बड़ी अनजानी है, और सुनने वाले हमारे श्रोता है श्रुति, अर्चना, प्रीति और इन्हीं सबका लाडला अबीर। तो आइए सुनते हैं आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत और नन्हे अबीर को ढेरों शुभाशीष।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, अब वक्त है हमारे अगले मैसेज को शामिल करने का। तो हमारा अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है पुणे महाराष्ट्र से, और सुनने वाले हमारे श्रोता हैं ओमकार, योगेंद्र और अमन। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अनाड़ी से ये प्यारा सा गीत।

0: उसमें कहा जाता है।
1: कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमें गाना बजाने में थोड़ी सी देरी हो रही है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा व्हाट्सएप मैसेज, उससे पहले हम कल के आकर्षण जान लेते हैं। श्रोताओं, कल के कार्यक्रम में हमारी आज की बात का विषय होगा विविध संस्कृतियों में महिलाओं की भूमिका, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग्स एमंग सिविलाइजेशन। साथ ही श्रृंखला होगी हमारी बात सखियों के साथ, और होगा साथ संगीत का। और इस सफर में आपके और हमारे साथ होंगी हम सभी की सखी उर्वशी पांसे। तो चलिए, अब ये मैसेज का गाना हम नहीं सुनवा पाए उसके लिए हम आपसे दिल से क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम हमारे अगले मैसेज को शामिल करते हैं। तो हमारा अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है चंद्रशेखर वार्ड बैतूल से। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं कमलेश, बिट्टू, अंजलि, कांता, रवि, योगेश, गुड्डी, रेखा और हर्षु। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म बेटा से ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अब अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कोठी बाजार बैतूल से। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं कृति, श्रेया, रुचि और आयुषी देशमुख। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म दिल तो पागल है से ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, बातों का सिलसिला तो यही थमता है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और मुस्कान की रोशनी आपके घर आंगन में यूं ही बनी रहे, यही हम सभी की शुभकामना है। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों से जुड़े रहिए और जीवन के हर छोटे बड़े पल का आनंद लीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: बेचारा भारत की आवाज।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब कुछ ही पलों में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: हर पल है आपके पास।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग इस भक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम ने।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज में मेरा भजन और जयदेव की इस कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइन ससन, अनजान के बोल है और सरदार सिंह का संगीत।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है, दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा,
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनूं,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन बाई लता मंगेशकर इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल मीरा बाई के हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे एल्बम मन मस्त कबीरा से भैजू मंगेशकर की आवाज में, कबीर के बोल और भैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए

रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर, जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है, और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदा सजदा एल्बम से।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्त

का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरूद्व संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

0: आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरूद्व संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूली बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम में यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार के बोल हैं और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

ये बिसरेगी हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम में यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार के बोल हैं और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं बसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने गाया है, भरत ब्यास के बोल हैं और बसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग

लगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़े तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है। आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारे एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गाँव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती। उन्होंने लिखा चरण पादुका। कटोरी के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछूं कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने मुहावरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियां और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो जरूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।

चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करके आई चिड़िया, चुन चुन करके आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया।

चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं। क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये प्रकृति ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोता ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी है। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी कि गुड़िया विच तकते नी परने सड़ गए थे कुंवारे अखते नी, शादी की इच्छा रखने वाली ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा बाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई है, ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम फिर भी रहता हरदम साथ। और इसका उत्तर भी दिया है सोशल मीडिया, जी इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है भाई, इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश दूंगाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में विशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सुरीला सफर। और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां, और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले पिछली पहेली जो हमने यूं बुझी थी उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है तो मैं पहेली बताती हूँ, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि जमीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारी श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरे हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला।

साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत तो बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्तराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफी की आवाज है।

फल, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे तो रात को सब अपने बिस्तर पे लेटे लेटे लेटे पहेलियां बुझा करते थे और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

सुन रही थी ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहाँ आकर हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर की खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम है भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहाँ हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आंख खुले और मेरा दिल दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बात है ना। हमारी श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा, क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और इसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों के स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज के तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन जी।

सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर? किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना। आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज का है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने

पैसे का लालच आज भी है। जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नजर पॉकेट पर ही रहती है। कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर वह थाली भरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन मुझे पता है आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले। बताइएगा ये कौन है? मैं हरी हूँ, मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले। ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है, उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास? और वो होता है दोस्त। चलिए, इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफी की आवाज का था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ भूसा मारता है, भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं, दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा, इसका उन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाइए, इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए, लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती है, भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। यह अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश वहां के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, बड़ा मजा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

समय था जब खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थी। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी चिटोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास खुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है। लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगें आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण यह है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारे उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगे हैं। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे

मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए कहा कि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों के कल्याण से ईर्ष्या के बिना नेक काम करता है, और यही भावना राष्ट्र निर्माण में सरकार की सबसे बड़ी ताकत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं लोकभवन में भी आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा और देश की आजादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रूपये मिलेंगे। ये राशि अवसंरचना विकास और गो संवर्धन में लगाई जाएगी। वहीं कपास पर मंडी शुल्क को घटाकर प्रति गठान 50 पैसे किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना की लागत में 3,000 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह अब करीब 10,000 करोड़ रूपये की हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तबादलों का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज प्रतिनिधि एक साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श करेंगे और दिन भर कई दौर की बैठकें होंगी। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस से मुफ्त परिवहन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश की शौर्य दल आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहणियां तक शामिल हैं। ये दल घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी समस्याओं को पुलिस के पहुंचने से पहले ही सामुदायिक स्तर पर सुलझा देता है। सरकार ने इस कार्यक्रम को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग के मुताबिक मानसून इंदौर और जबलपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेगा। अब तक प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि भिंड, दतिया और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिन तक लू चलने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को जन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों में 12 से 18 जून तक 3

सी जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर ने काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेता जिले के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नीमच एसडीएम और तहसीलदार ने आज ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया और खंडवा में समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा और डॉक्टर शोभा पेटड़कर 11 जून को खंडवा आएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: मैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश है कुछ ही पहले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जुजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतारिणी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के

0: सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
4: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
3: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
3: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार मगने। आइए सुनते हैं डाक फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेन्द्र के बोल है, शंकर जयकिशन का ही संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार रंग में कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी की बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूली बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न वर्ल्ड इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले मुकेश की आवाज में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके रहने उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाय चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून

0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार।
0: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
1: जी।
0: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
1: बिल्कुल
0: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
1: बिल्कुल
0: चर्चा।
1: और मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं, आपको
0: जी
1: और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की संस्थापक है जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे, बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
0: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
1: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि
0: हाँ,
1: नहीं ये झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे हैं। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
0: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
1: गुठलियों के दाम।
0: यानी
1: वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
0: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
1: बिल्कुल, और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है, सखियां हैं, जो भी सखा है, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
0: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
0: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
1: गीत सुनने से।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वाले
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष
0: जी,
1: यानी अपनी सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बताएं।
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में
1: जी। तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और ज़ीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले ज़ीनिया इवेंट्स का इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है
1: जी। उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इन्वाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं
1: जी। वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। ज़ीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा सीएसआर यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और आप सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली। और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल पानी, और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं। हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझ कर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं, और मैं दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में होकर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है, वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का

0: श्रृंगार है। बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए भी, अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कपड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
1: बहुत जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों में आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता, इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का मायना तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि गर्मी नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पर करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये उन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं, बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी।

0: पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं, घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद, जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है, मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए, उसको ऐसे नहीं कि आपने से छोड़ दिया। अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
1: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
0: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
1: आधा ग्लास पानी।